0: शुक्ला गर्ने कि टाइम चेक।
1: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।